0: 来。
1: अरे प्लीज सर्दी में आज सावन आया है, पिया को भाई चाय और मुझको मस्का भाई, पिया को भाई चाय और मुझको मस्का भाई, न शाहरुख न सलमान, मेरा तो पिया है नंबर वन, तो बजाओ भाई।

0: खड़ो नदी से पार और लग्यो नदी से बाण।
1: खड़ो नदी से पार दी और लग्यो नदी से बाण।
0: तो मैं तुझसे पूछूं ऐ सखी कैसे छूटे प्राण।
1: जल खोड़ो और मेर गणो ये ही इसको प्रमाण।
0: तूपी तूपी करत रहे ऐसे छूटे प्राण।